खेत्री मयूम बबीता चनुगी मैदी इसईद मालेम लेसमलोल ताबीरे चलीब थोड़ों पर अयुकी पुंग तरह मिनी निपू खुमुक्चम रोमा देवी की नोट दहनचगनी आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग लाथों सरी नोमाइथेन पहाड़ी सिंगे खोजेल मतंगों कदों की अहम लेजर नोंगी नापल की थौरब तेखना सूनत वही मरी ताचरें नोमाइथेन पहाड़ी सिंगे मास्टर पीस सैरेंगना थांजम कोरा

हाइफन खंगते फिल्मदी दबीरे बेबी रानी न सकबे इसे सेरिंग बा दसेंद्र ओइनाम सेरंग बना बसंता मथंग दल को चली बा फिल्म लव लव सैसे लिबसिना हुई दो नौबो यमदी सरिता गाज में सेरिंग बा मदी सेरंग बा एस के नौमाई थे

मीरा मेबजा फिल्म जिदा किता बीरे राजू सर मन सक पे इसे सेरिंग व सुरे सिदंग सेरांग व बेसे मरांग थे इसे इसे तभी किवगल लोई देना फिल्म इसे लंतुक सबा मतांग सिदा लोई जरे तभी रिवर्स ये आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल ने हाउसिक संदूक सरी खोंजल नाचों।

라오샤샤 너글로이르두는 몽알람다이르 퉁느리 무두디 까다이다 니드후보니드 후조니 소디기 소키고니 수티아시아로세 니세세세 비드후부키 우티네노 소포노데키 कांडी कांडी को ही बोध हुर पाशे सुनो सुनो प्राणनाथ की देखिलाम आमी ताबियु प्राणनाथ अंथोक पनी ननाई ऐगी मंगदने फजग्रब मूर्ति अम उरमीने बुंगा अधुन ननाई राधा ऐदी ऐगी इमा कृतिदान पोक पदगी अतोप पुरुष अमद हन्नयंग जद्रबिनी अदुगुम लबरुप अदो मुन्ना मुन्ने येंगले हायरगने इबुआ नुशी बदी नुशी दे ताब दे इबुओन सिंगनगनु राधे नंगना मंगद उरी बदो अतै कनाम नती कृष्ण ऐनीने नंगा ऐगना अमत्ता ओइदुना पोकलु बदोरी बनीने ताब दे इबियमने

0: सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
6: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
7: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
8: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
4: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
9: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
10: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
11: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
4: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स। Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
14: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
13: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
15: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and line land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours. Introduced in 2014 for nationals of 43 countries, the e-visa facility has now been extended to citizens of 172 countries. It is currently available under 17 subcategories, including tourist, business, medical, student, transit, cruise and mountaineering visas. The ministry said India now issues roughly 78% of its visas electronically. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
13: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. More from our correspondent.
7: The assembly girao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated during the assembly protest. Doctors are monitoring his condition and have placed him on oxygen support. The BJP has called for a statewide bans today, alleging excessive use of force against protesting students and reiterating its demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. Ranchi Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri appealed to people to observe today's band peacefully and warned that appropriate action would be taken against anyone attempting to disturb law and order or incite violence. The administration has increased security arrangements at key locations in Ranchi and appealed to all sections of society to maintain peace and cooperate with the police and district administration. Mehvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
13: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 132 people were killed following a powerful 7.4 magnitude earthquake hits western Colombia yesterday.

अनामिका म्यूजिकल एसोसिएशन की सेसेप संगी कोंजेल्दा वाईकोम बिहारी ना सेरेंगवा मतम इसे मता बीरे खुदोल की उहुम सुगदा लखो चरीब सैसकवा थाउनोगजम सनातों बसिंग सनातों नंतुजा की मैयक ने असुम सहुरी नकुट मंगना हंचिन हंचिन चुरंबनी

कदोल के हम बताता भी रहे लूसी का मैं फिल्म दगे सुरीलानो सकपे से सेरिंग बार रजन ओइनाम सेरंग बनंजी सुरचंद्र शर्मा मतंग लोको चली बा फिल्म ननाता असुम असुम कहते मैं मुंह की मैं एक ने सुरी सेंजमना सेरंग बे से ने सेशन लिपि पुष्परानी

नंग से ऐगिरी फिल्म सिद्धि ताबीरे सगुल सेम तिजेंद्र की खुंजेल दा मसामुन सेरंग भी सही सेरंग वा शांतिरा नीलाश्रम मतंग ताबीरे से एजे मैस्ताम मधे संगीता अनिपुन सकमिना बा सनातन नंग थोम भी मेयता बेबेक अली चोंगथाम ना सेरंग भी सही लोकचरिवा फिल्म चनु आईपीएस

अभी बस आकाशवाणी इंफाल के कंगला चैनल की अनिशुभरम परिंगी हौजिकता भी रसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआर तीन स्पॉन्सर तब थोरम उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी

0: भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
0: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोता, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओं, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्यपुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
0: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: Hey, you, come up!
3: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है

0: करती है।
1: मारो
0: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो,
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टाइम।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची। जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई
1: और यही वजह थी

0: कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
1: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
0: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वहीं हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय, निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: छह एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह, छह चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
2: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
6: तो श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
7: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: हौजेदो नताबिरे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने स्पॉन्सर तौब थोरम उमंग अदम थोरम संदुक्त थोरम संदुक्त न तांजरी बजे आकाशवाणी फलगी कंगा चैनल की अनिसुब थोरम परिंगी हौजी के मुक्ता बिरसी।

श्रीनु वन्दितङ्गुरुमीश्वरम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजीनु सराशरं तत्पारदर्शितं जीनु तस्मै श्रीगुरुदेवभ्ये नमो नमो श्रीसदाशिवनहायिताव पुरे भवानि दशभुजे ऐमो श्रीप्रभुरामचन्द्रगी सातकान रामायन् श्री प्रभु रामचंद्री मोगी गुण कथा कया पुन मंग श्री प्रिय प्रिय ताजब मतम धन्य ब्रह्म बोध पा पुन मुक्सर कदम अंदगी त्रताप जुग से मनुंग लैरी विभु मागी गुण कथा शिव तार व मखई पेन मनाई द्रवा तार उतारु गण तानिंग बा थगली व मखई पेन मनाई द्रवा थौ धौर गण थंगिंग बा महा आ मित्र कोटि के मरस कोइरा बा इबुंग मागी गुण कथा नि दो हन थाबिरम बा आमृतपर्ण पूर्ण भारती रामायण काम धेनु सुरतागन कृत बसो बसो वाल्मीकि देव दद्वहा आत्मीजमृत रामायण पुराणम पीबती पीबती मुग्धा कोति माखरजनी स्था सुमहरि पाखर वशाखर वैवोमागुण कथा रामायण कव पुराल सिन काम धेनु कव संविगि मसकद ओय ईबीरमल्यंगीरंबा वाल्मीकि मुनि देवन दद्वहा सन संगम सुम्बा निपागी मर्स ओरिडगा अयाम नाम सर्वलो बीरिब नाम ताबीर बहलम भक्त वैष्णव इमाय लुस्तवा विष्ट विपुन मन बसुरूपी सनाओगी मर्स ओदना वाल्मीकि देवन सुंद बीरपा रामायण आमित्र पुराल शिभु थाइब मखई पेन नाइद्रबा थौ थौरगन थंगनिम तारिब मखई पेन मनाइद्रबा तारु तारुगन तानिम श्री प्रभु रामचंद्र की गुण कथा निदु अशुम नाम शिबु पांगन कलिंगई बुद्धि लव सिंह लैरिंगई मिन मिन उरिंगई हस्तो ददुधारी खुन सैसु पाइदना सैसु न पांगल की शक्ति ओर त्रिंगईदा नाम सर्वलो यहुवदबनी नाम ताज हुवदबनी हरि नाम सर्वोन नाम ताज अवर शक्ति अवर सोन जब पुनः मंगसिना ऐ कोई कलौ कली जीव पुनः मगिल्ला न फमनी सोमाइदन इरियन थंबीर मबा ऐ बुंगोगी नाम निदु प्रिय ऐ न मथंग मथंग असम असम भाई ख्याल लांग मसीना रामायण पुराण सात कांडा कांद तरी रसगी मनुंगा अहान बगी आदि कांद लोई घरे अयोध्या कांद लोई रे अरण्य कांद लोई रे किसकिंदिहा कांश घरे सुंदर कांद लोई घरे लंका कांद लोई रे हौज लाइवा अरोइव उतर कांद हाइव मतांग से मसीम तंग यौर खरब सैत त्रेता द्वापृत कली हाइदन जुग मरी लैब सगी मनुंग प्रिय सैतब जुग सगी मनुंग ददि धर्म की मखोंग मरी पालमी अचुम्ब हाइब सीमा सिंगाक दलेरमी लंबी दलम जाओर छोरोक द बाजार कैथेन्दा सन्ना लुपा हीरा मणि मुक्ता कया लंग थोग धनमगसु कनान हुरु दे कनान हुरान दे मपू लाक द लौजे मपू द पीन दमसिदा धर्म की मपांगल दम कलमी दो त्रिताप जुग दुगी मनुंग धर्म की मखोंग हुक्त आयरे अधर्म की मखोंग मपाल खरे फटब कन्म महापापी कयापु नमक थोरक पहौर खरे असर की द्वापर जुग दुगी मनुंग दना धर्म की मखोंग अनि अदुग अधर्म की मखोंग अनि अनि खाइबो खाइबो तंखाई तंखाई ओय दना फटब कयापु नमक से मपांगन कले धर्म की मपांगन खज खज सुंदर पसिना कलीव जुग से की मनुंग ददी सुप्त दगी धर्म की मखोंग से अमक तंगायरे अधर्म न अहम ओय गिदना फटब मया महापापी सोर चदान मयाम सिना असिद न तब कन्म कयापु नमक सी मथंग मथंग लंग पदगी ऐबु श्री प्रभु रामचंद्र ना नर अवतार मियो अवतार तौर पनि दुप्रिय जगत लैरी बा भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण हाइदन मखन मखन इबुंगो की अवतार की मखन कया लैब सिगी मनुंग द हन ऐबु श्री प्रभु रामचंद्र इबुंगो ना त्रिताप जुग सिगी मनुंग दा इबुंगो ना नर जोनो मियो इबु ओइना दशरथ तनयु दशरथ की मशा इबुंगो ना अवतार तौर इबगी मरम सी थोइदोंग ना आई नंबर ख्याल लांग उधर कर सो ममांग ठगे उजागर जोन कयान थंबीर मबनी दो इबुंगो ना मनाई भक्त कया पुना

वेस्टर्न म्यूजिक की थोरम ताबिरी अदोम में थोरम ताबिरी बस ये आकाशवाणी इंफाल की कंगला चैनल की थोरम दी हाउसिक ताबिर सी सपना इरबसिंग की वारी सपना इरबसिंग की वारी नसी की वारी द पूर्ण लक्षरी गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ख्रिस्तन पोकदब चही चमगा यांखै की ममांगद हौजिक मतम की नेपाल की मनुंगद लैबा साक्य सगे की निंथौ सुदोधन अमदी महारानी माया अनि की मचा ओइना लुम्बिनी द पोकी मा की अंगांग ओइरिंगे की ममिंग दी सिद्धार्थ गौतम कवि असुम हाइनै महाक पोकप मतमद हेक पोकप ग लेपखत्तुना अवांग पांगन खोंकाप तारित चतकी महाक की खोंग नेतप मफम सिंह लैमाई थनबाल थिनगलक्तुना साथी अमदी गौतम बुद्ध असी भगवान श्री विष्णु की मपन शुभ अवतार निहायना सिद्धार्थ यामन नौन अंगांग ओइरिंगैद मसागी चही तरा तरुक सुरुकपद यशोधरा कौबी मसंग मतौ निंथी बिनिंथौ मचानुपी अमग लुहोंदुना युम पानखी अमदी मतम खरगी तुंगद

0: ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯁꯤꯗꯥꯔꯊꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅꯥ ꯄꯨꯝꯕꯕꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯀꯣꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯍꯪꯍꯪꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯊꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯄꯤꯔꯝꯗꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 6 ꯆꯨꯞꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯇ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯦꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯇꯃꯛ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯁꯔꯨꯗ ꯎꯟꯇꯅ ꯀꯨꯞꯄꯒꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯕꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅꯇ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 95 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯕꯣꯙꯒꯌꯥꯗ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯕꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯉꯥꯜ ꯏꯟꯂꯥꯏꯇꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯤꯔꯚꯥꯅꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯂꯥꯏꯇꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯤꯔꯚꯥꯅꯥ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ꯫ ꯁꯤꯗꯥꯔꯊ ꯒ�ꯇꯝꯅ ꯏꯟꯂꯥꯏꯇꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯤꯔꯚꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯒꯌꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯆꯠ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯍꯤꯡ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯕꯨꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯁꯤꯅꯒꯔ ꯀꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯒꯌꯇꯝ ꯕꯨꯗ ꯅꯣꯡꯒꯥꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯒꯌꯇꯝ ꯕꯨꯗ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष

0: के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय

0: सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से

0: 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फौज भाई, आज मंगलवार है और हम लेकर आए हैं महफिल। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं आईना मुझसे मेरी पहली सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। ये प्रसिद्ध गज़ल है फिल्म डैडी की, जिसे तलत अज़ीज़ ने गाया है। संगीत राजेश रोशन का है और बोल सूरज संयम ने लिखे हैं। तो सुनते हैं ये गज़ल।

फौज भाई अब सुनते हैं एक प्रसिद्ध गजल, रिश्ते टूटे बंधन टूटे। इसे गाया है महान गजल गायक पंकज उदास ने। उनके हसरत एल्बम का ये हिस्सा है। इस गजल के गीतकार है सुनील जोगी और संगीतकार है निखिल विनय। ये गजल टूटे हुए रिश्तों, बिछड़ने के दर्द और सूनेपन की भावनाओं को बयां करती है। पंकज उदास की सुरीली और दर्द भरी आवाज़ ने इस गज़ल को बहुत असरदार बनाया है। तो सुनते हैं ये गज़ल।

मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। फिल्म रोग का है ये बोल, गाया है केके ने, गीतकार है नीलेश मिश्रा, संगीतकार है एमएम करीम। ये गाना अपने गहरे दर्द, सादगी और केके की रूहानी आवाज़ की वजह से आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है।

फौज भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से महफिल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं दिल आशना है फिल्म से ये की गज़ल। गायक है पंकज उदास, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आनंद मिलन। गाने का मुखड़ा है किसी ने भी तो ना देखा निगाहें भर के मुझे, किसी ने भी तो ना देखा निगाहें भर के मुझे, गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। तो सुनते हैं ये गज़ल।

फौज भाई कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में प्रसिद्ध ये गीत फिल्म जखम से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है MM करीम ने और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। ये गीत फिल्माया गया है अजय देवगन और पूजा भट्ट पर।

फौजी भाई, इसी के साथ आज का ये महफिल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आकाश पानी इंफाल से दी ने फुफा बुतुम बुजान लू रखा तम पब से जान कतों कभी मिता लम तम पब मई मेदें वे मीटर फैथुम लिख दई पॉइंट अखचरु किलो हस फाइथस लेपस कनाई थावरे इंखुने बंथे से जान कतों चम आकाश पानी इंफाल लाउ दुको से जान कतों चम चम तम पब मई शिबाजी का मई मणिपुर का कुम चिंगे चिक थुंबु खरोइन कहो कुमई कंग कंग तोंग इरांग ले कलिंग नाइ मै सीबीआई खने ने एनआईए तोंग केस खने हियरिंग सुकुन स्पेशल ट्रायल कोर्ट कनाई लिंगथाउ मितुंग लत बंग कफे ना खंग सुप्रीम कोर्ट इन मणिपुर खनी असम सरकार कुमना बाय मे खौति थाय कन थे मणिपुर तोंग कंग कंग तोंग पकमी इरांग खौकि रेने पकमी केस कोर्ट फुगुत नि नुन नुनुंग ते जाव न चीफ जस्टिस सुरजकान कनी जस्टिस जयामिया बाची कुमना जस्टिस बी मुहार कजाउ में बेंच खालीना दौरानो अथोरिटी गोय को लेला में जाओ पुलुभूमि में गोय कनी उतों का खुद में गोय कुमना लॉयर्स गोय रिना कलेंगनाई में रिकॉर्ड गोय तो जंगन पुखंगना चार्जशीट पक्कू कुमी केस गोय तो मिन न ललम कफेन कजामी कजन्ना कंधे नो सहे सबम स्टेटस रिपोर्ट गोय तिगंग खंगने ने बेंच ट्रेन कलिंग नाइ मा हाई कोर्ट गोय खोय रेस्टार जनरल गोय खनि तिथाय कन थे तुन लप पोर सब मे कक्षिन डिस्ट्रिक्ट तुन हियांगलम पुलिस स्टेशन बुंगुं खब मै वाबुकाई टुरेल ममै लमकान को सिक्युरिटी फोर्सेस ट्रेन फु मितान दत काइ पुगो ली नाद मानसिन अजु निम थाव कन थे मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम न किपा मिसेला खलेन सब मे कबम खौतुइन मैक्सिन कजाउ न 9 एमएम पिस्तोल खा सिंगल बेरल कथुम हाम मैगजीन कजाउ में कार्बाइन कथुम 303 राइफल अखा 51 एमएम मोर्टार बम अखा टिप लॉन्चिंग डिवाइस कथुम हैंड ग्रेनेड कनाई बाबाय मै डिलिब्रेशन तुम कापनु में तमाई थुलु तचात इंसास राइफल बॉगनेट खात कजाउ ने बाय में लंपो ननी निम थाव कनी न सै मै द कोथोवा पुलिस स्टेशन तुम बुंगुंग को नाइबम मै वांगजिंग टुरेल तुम लमदिंग लाइकोल दांग को तुम मितुम लुम कई के मई थे मी पुम अख ताव कई कन थे अनि तुम थवाल चमला मि रिना पुलिस तोंग लत पोग दे सागने तु मि तक लुन थैंगम थे हेल हेरो पाटु को बम मई मसेय तु मई नि थाय कन थे त खुन मई बे थ्रिना कमई को हु मि बु तोंग बुजान छि कने खरेना फुतो मन गोंग को पिट तोंगे पुम त थवाल पुलिस खनिना फोरेंसिक एक्सपर्ट गोरिना जागु कमई तंग खो लथाव कन थे न सबमे गोंगब मई बॉक्सन गोय तुम तिमी खनी ना निंगथा तिमी मुंग ले कले नाइ ना असे थवाल मिनी सेक्रेटरी कॉम्प्लेक्स को दे लम दि सेंब मे तान तात के कन थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थवान खनी थवाल म्युनिसिपल काउंसिल ले करू ना लाम पक मे लम दि सेंग मुंग को दे डिस्ट्रिक्ट हेतों डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर नन खनी स्टाफ गोय कजाव कने

ताविरे लैसिलदगी उरो फिल्म असिदगी मंदाकिनीगी सहेक्ता जी सनामसान सेरिंग बमदी हामाम नवन सेरांगवा फिल्म इसई खुया जब पाम जब कनागा नुंसी खोंगलोई उमिन नबदा अमन अमगे मतिक मगुन हमन दबनते लैसिल गनो मदोनगा थाजग थावल गि मंगाल ग कायनब यादबगुम अनिगी खोंसासु असुमक चमिनकी मथंगदम लोबिरसी लानफम द इवेनी फिल्म सिदगी सोरी सेंजम अमदी मंदाकिनी की अपुन बखोन जेलदा रोमी मैतेना सेरिंग बा सोरी सेंजम न सेरांग विषयी

फिर फिल्म सीख रहा मथे मथे मुझे तावी रही। आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संडोक सिरी खुमगंगी थोड़म।

0: ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯄꯪꯊꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯄꯪꯊꯣꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ओइना नंगनो सेम किबा डेपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस दा प्रमोशन पिबा अदुगा ओलम्पियन अमसुंग अर्जुन अवार्डी केस इंग्लैंड सेनाबुना यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट की स्पोर्ट्स प्रमोशन की डेपुटी डायरेक्टर ओइना हापा हाइबा वाफमजु अरेबसंग की मनुंग ते याउरी मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एम एस पी डी सी एल नाब निथमता मियाद मई की खुदचाब थोगनदर क्या पैखली इम्फाल की निताई पाचुटेक्ता लेबा डिरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डी आई पी आर ने सिंधुना डिरेक्टरेट ऑडिटोरियम पांथों तरह सुब मी द प्रेस की थोरम एम एस पी डी सी एल की मेनेजिंग डिरेक्टर एम रवि सिंह निथमता की मियाद मई निथी फंगनब कंपनी तोान तोब क्या पैखली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मपांगल हेंगठनब स्मार्ट मीटर पानब पावर बैंकिंग रूफटॉप सोलर पेनल पानब की थब पैखली राज्य इलेक्ट्रिसिटी सिजनब की चांग नोम नोम की हेंगली दिसंबर था फाउब मई मेगावाट चहुम चहुम तरह फाउब की चांगद सिजनब हेंगलपी थाजब ले मणिपुर की ओर मई मेगावाट चनी मरफू तरह मथोई दशमिक तरुक मापन पुथोप की चांग श्री रवि नहाय एम एस पी डी सी एल की माइक पी एम सूर्यघर मोब बिजली योजना मपुंग फान पैखनब थौरी मथंग सही की मार्च फाउब युमथों लिंग तरह निपानद रूफटॉप सोलर पेनल्स पानब थौरी हाय
1: जून की वर्ल्ड कप मैं मई अवार्ड पर थे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इनग पंगम तो मई 291 मेगावाट ने 291 मेगावाट से फंगदना 160 मेगावाट तो फंगे चाम होरगले होगी अवाब से जून जुलाई असवाई थी अवाब से कमाय तरह मेखटे है खनरपद कैबिनेट पास तो भी एन टी पी सी की मखाद फरका थर्मल पावर प्लान 100 मेगावाट लेनब अखो प्रपोजल थाजग्रे रिन्यूएबल इनर्जी 50 मेगावाट एस जे बी एन लेनब
0: मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन की चेयरमैन टेक्निकल कमिटी एंड पेडजिन लुचिब पोलो सानरुसिंग की म्यूट कांगबो सीएम सेक्रेटरीट मुख्यमंत्री इमरान खेमचान उनख्रे उनब तरह तरुक सुब मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टोर्नामेंट पोलो सानरुसिंग याइफ थौरांग की मतांग खनखी मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की मियोसिंग दा मणिपुरी की पोनी पो गाक सेनब अमरी योखटबद पुन्ना थौदांग लोमिनसे हाइना अपील तोखी मुख्यमंत्री ने मखातान हाय मणिपुर की पोनी असी लमदम असी की चौथोपचनिंगाई ओइरब पुवारी गा सगोन तुना लाकलब सगोल मखल अमनी सगोल असी की मतेंगना अवाब माइथिब पीखी महाकना हाय सरकार की माइकैदगी सु पोनी पो गाक सेनब अमरी सगोल कांगजै बु योखटनब पाइखट पयाब थबक थौरम सिंह पाइखटली राज्य की लन ओरिब पोनी पु योखटबद नतना सगोल कांगजैबो मालेमद हेन मसक थोकप मसाना ओयनब हाइबसि सरकार की लेंद्रब फिरेबनी अथौब सिंह की नुमित अगस्त 13 की थौरम निंथीन पांथोप गमनबगीदमक नुमित असिद लंबी की चटोक चसिन अहोंब खर लेरगनी मणिपुर ट्राफिक कंट्रोल पुलिस विंग की चेरोल हाय अथौब सिंह की नुमित असि मोयरांखुइबद लेब हिसम याइचमपाट कंगला बी टी पार्क पांथोकनी मसीन मरम ओरग सिंजमई रोम की लाप गाड़ी सिंजमई थों पीसुंग थों रोम थैदना चटकनी मया इम्फालोम की लाप गाड़ी कैसाम थों हेन

0: Akashwani. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
1: Maniye Sabha Sado, Maniye Sabha Pati Ji. Now question number 241, Sriman G.C. Chandrasekhar Ji.
2: Prashn Sankhya 241. क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
1: Now, honorable minister, speaker sir, they never persuade me. You are always persuading me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except the Gargaji. I am always under the pressure of Gargaji, not of anybody else. Honorable Minister, first supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai Ji.
3: Sir! Sir!
1: Then first supplementary, G.C. Chandrasekhar Ji.
3: Bye!
1: Bye! Take your seat, I am calling him.
3: Sir, Mike!
1: You take
3: Mike.
1: Supplementary Sriman G.C. Chandrasekhar Ji.
3: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
1: Sir, you
3: this
1: please,
3: is my request. Do not off the mic, sir.
1: I am allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai Ji.
4: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफशोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
2: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।

0: किसानों की कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर तमिलनाडु में लगभग 50 से 54% और गुजरात में 30 से 40% तक सीयूएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माने अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करके अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेदर फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
2: ड्यू टू दी चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
3: हेलो मिनिस्टर,
0: मैंने सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये जो प्रश्न है आपको मिलने का है और इसे संबंधित नहीं है।
4: बिहार से मेड रेन आपसे धूप पीएम जुड़े।
5: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी की ये पूर्वोत्तर सेवा है। फिल्म
7: दिल्ली टू रिले द क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट तावेरी।
8: आकाशवाणी इम्फाल के इंडियन म्यूजिक ऑडिशन बी फ्रेश के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थाजन बिकी बसिंगना एडमिट कार्ड लौबीरनबा लागलिब ऑगस्ट की तांग मंगा तगी तरानिथोय पाउबगी मनुंगदा ऑफिस आवर मतमदा म्यूजिक सेक्शन द लाकपिनबा निंगसिंग यरी।
7: आकाशवाणी इम्फाल होजिक ताविरसी अदन एसएमएस मदी फोर्स कार्ड की खुथांग द खनबिरकबा मणिपुरी फिल्म इसई सिंह मथंग मथंग होना अहब खुदोल तमजुरी मीरा मेमसा फिल्म राजू शर्मा सदानंद नाउबुई अहम के अपुनब खोजेल सुरेश हिदंगना सैरेंब विशेष मोरंगथेमना सैरंग इसई ताजनी है खनबीरक्लीबना नंबोल लेमपोकुम अवांगदगी लौरेंबम बिजेन अमदी लिंथोय ओइनाम अदुम खनबीरक्पी इसई खुदोल तमजरी नुमायना तामिनासुई।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आज का हर श्रृंखार अर्पणा के साथ स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड में। 10:31 और 6 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए हर श्रृंखार शुरू करते हैं यस बॉस फिल्म के गीत के साथ। आवाज है अलका याग्निक और कुमार सानू की।

जी हाँ, सोचने समझने की बात कहाँ रह जाती है जब बात होती है प्यार इश्क या हम कहें मोहब्बत की। बातें होती हैं तो होती हैं वादों की। वादों की जरूरत नहीं उन रिश्तों में वैसे, जहाँ निभाने वाले पर भरोसा होता है। और अगर आपको लगे कि निभाने वाले पर भरोसा है तो हर रास्ता आसान है। इश्क में मोहब्बत कहें या फिर प्यार कहें, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जरा सोचिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मोहब्बत को समय देना। फिलहाल समय हो गया है 10:36। अगला गीत होगा फिल्म विजयपथ से, एक बार फिर से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होती मोहब्बत में। जहां किरदार हल्का होता है ना, कहानी डूब जाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो विश्वास बना रहता है, किरदार पर भी और प्यार पर भी। फिलहाल आपका और हमारा प्यार बना हुआ है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर। हर श्रृंखार में आज अर्पना आपके साथ है। 10:45 और 52 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सभी के लिए होगा अनुपमा देशपांडे की आवाज में। फिल्म का नाम है सैलाब।

ये इंतजार भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपको पता हो कि सामने से मोहब्बत मिलने वाली है, और ये इंतजार की घड़ियां बस यूं ही बीत जाती हैं, जैसे फिलहाल ये जो है हर श्रृंगार अब खत्म होने वाला है। और आज के हर श्रृंगार का आखिरी गीत जो होगा वो इम्तिहान फिल्म से होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत में मैं अर्पणा आपके साथ रहूंगी। फिलहाल 10:44:36 लीजिए ये गीत सुनिए, और गीत के बाद एफएम गोल्ड पर समाचार जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं

0: ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, "The new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court." The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, "In matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China." Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
2: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression. And more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights. And I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
1: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said,

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद निखिल.
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: थैंक यू निखिल एंड पुनीत, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज फॉल नियरली 0.5%. सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices, changes to take effect on 30th of September this year.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट. सेंसेक्स 400 अंकों के आसपास नीचे आया. निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी. कहा यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सूचकांकों में स्टॉक बदलने की घोषणा की. बदलाव इस वर्ष 30 सितंबर से होंगे.
0: Before we move into the program, we'd like to share with you listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. The benchmark indices opened on a negative note and remained range-bound throughout the session following a rise in oil prices amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई. सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.7% से ज्यादा, एक्सिस बैंक और इंडिगो में 1.5% और भारतीय एयरटेल में 1.4% से अधिक की गिरावट आई. वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2%, इन्फोसिस में लगभग आधे प्रतिशत और टाइटन में 0.3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, hospitals dipped 1.8%, realty shed 1% and FMCG lost 0.9%. In contrast, focused IT climbed more than 0.4%. IT rose almost 0.4% and healthcare added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,033 advanced and 198 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज जो मार्केट में हमने गिरावट देखी, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि गिरावट देखने को मिली, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ी सी तेजी भी देखी गई थी.
2: निखिल, आज मजे की बात यह है कि हम, हालांकि आपने कहा कि बाजारों में गिरावट देखी और इनफैक्ट मार्केट ब्रेड्स भी कुछ नेगेटिव है, काफी कंपनीज में गिरावट थी, लेकिन अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप है, जो ज्यादातर जो गिरावट बाजार में देखी गई वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी हेडलाइन जो नंबर्स होते जब बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो शेयरों में, वहां हमने गिरावट देखी। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, आपने बताया कि इंडेक्स में भी वहां पर गिरावट नहीं थी, स्मॉल कैप में तो थोड़ा हल्की बढ़त थी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो FIIs हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, उनकी बहुत खरीदारी अभी बाजार में नहीं है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। FIIs का रुख बड़ा मिला जुला है, वो किसी दिन अब आप देखेंगे कि पहले तो वो लगातार सेलिंग कर रहे थे कई महीनों तक, अब हम देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना गया है कि उसमें कुछ मिक्स्ड ट्रेंड है। जुलाई और अगस्त में कभी एक दिन वो खरीदारी करते हैं, एक दिन वो बिकवाली करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स जो शेयर्स हैं, जहाँ जो इंडेक्स में वेटेज है इनका ज़्यादा, वहाँ पर हमने आज सेलिंग देखी थी, इसलिए वहाँ पर गिरावट थी। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज भी काफ़ी स्टेबिलिटी थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा तेज़ी थी, तो स्टेबल थे। तो बाज़ार को इस वक्त हम काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है बाज़ार के अंदर। सीधा हम ये नहीं कह सकते बाज़ार में कमज़ोरी है या बाज़ार में तेज़ी है, इसलिए ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वी नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली।
1: तो इसमें मुनाफा वसूली भी एक कारण माना जा सकता है इसके लिए?
2: देखिए मुनाफा वसूली बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त, बल्कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे IT क्षेत्र था वहाँ पर थोड़ी सी हमने कमजोरी देखी थी, वहाँ रीबाउंड हुआ है तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं ये कहूँगा कि चर्निंग हो रही है, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अंडर वैल्यूड सेक्टर्स में यानी IT जैसे क्षेत्र में और बैंकिंग में वहाँ पर थोड़ी बाइंग हो रही है।
0: Puneet, so you would agree that, you know, and I remember this conversation earlier also with you before we moved into the studio, that means there's a broad-based movements are not, there are no broad-based trends, but stock-specific.
2: Absolutely.
0: So without mentioning stocks, just give us an idea about this, please.
2: So you're right. I mean, so what we are observing is that while there is no broad-based trend, no, we can't say that the market is moving up or moving down either way. There are pockets of strength within the market. So you will find that there are pockets of strength in a particular sector. For example, we have seen IT sector rebounding lately. You know, last couple of weeks, we have seen a big 15-20% move in IT sector stocks because they're really beaten down. So some money may have moved from other sectors which there were profits to be taken. So those that money may have moved to IT sector stocks. Similarly, within the mid-cap and small-cap space, we find stocks which have done very well actually. And a lot of retail investors, mutual funds, they are attracted to mid-cap and small-cap companies because the growth that we have seen in the numbers that we saw for the last quarter, that has been very good for small and mid-cap companies. So a lot of money has actually rotated out of large caps into mid caps and small caps.

0: बात यह है कि फिच की जो जो सॉवरेन रेटिंग होती है, जो फिच ने जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग BBB रखी है, ये एक और स्टेबल है, क्योंकि पहले भी BBB थी। हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अब BBB से अगला जो कदम है वो ए रेटिंग जो होती है, अगर वो आती है तो इसका देखिए असर पड़ता है भारत की, किस रेट पर हम पैसा भारत रेज कर सकता है। ये क्रेडिट रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, क्योंकि भारत तो ऐसा कोई फॉरन बोरोइंग नहीं करता है, लेकिन जो हमारी देशी कंपनियां हैं इस रेटिंग के बेसिस पे उनको क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उससे आगे वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरा यह है कि जो भारत में अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं, तो इस रेटिंग से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर फिच ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है या ग्रोथ है वो स्टेबल है और अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए क्रेडिट रेटिंग का बने रहना। तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी का संकेत कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पे बेहतर थोड़ी से बेहतर करेंगे। एंड इफ वी गो इनटू द इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, BBB इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इससे अगर बेहतर होता है तो भारत को काफी फायदा हो सकता है।
1: जून में देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो जुलाई में 14.8% घटकर 24,697 करोड़ रुपए रह गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में 31,961 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून के मुकाबले अधिक है। इक्विटी फंड श्रेणी के लिए जुलाई में स्मॉल कैप फंड्स में सबसे अधिक 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स ने कारोबार किया। हालांकि इस दौरान लार्ज कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स से निकासी देखी गई। पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश घटकर 1,559 करोड़ रुपए रह गया। वहीं डेट फंड्स में ट्रेंड उल्टा हो गया, पिछले महीने इनमें 1,87,511 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। डेट ओरिएंटेड स्कीमों में लिक्विडिटी फंड्स में सबसे अधिक 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पुनीत, अभी जुलाई के महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट देखा, जून के महीने में जितना देखा, जुलाई में घट करके वो काफी कम रह गए, इसके पीछे क्या कारण रहे?
0: देखिए, ये आप अगर देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि लार्ज कैप्स का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम हुआ है पिछले दिनों, और इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादातर वो अब मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस ये डेटा उसको पुष्ट करता है, उसको दिखाता है कि हमारा आंकलन जो है वो सही है। और देखिए, जो SIPs हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें काफ़ी उसमें से पैसा लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक दर्शाता है कि जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की, वो थोड़ी बढ़ रही है। और कुछ हद तक जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, उसकी वजह से ये डेटा अफेक्ट हो रहा है। आने वाले समय मेरी उम्मीद है कि जो 2 या 3 महीने कंसोलिडेशन का जो समय है मार्केट्स के लिए, ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर होगा। और मार्केट्स, मुझे लगता है कि ये बता रहा है हमें कि मीडियम टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है।
1: और SIP के बढ़ने का क्या कारण मानते हैं आप?
0: देखिए, SIP एक फॉर्चुनेटली एक बहुत ही स्टेबल एक तरीका है मार्केट में पैसे डालने का। जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रोज़मर्रा में मार्केट्स को नहीं देखते हैं, तो ये SIP की वजह से हमारे भारतीय बाजारों में काफ़ी स्थिरता आपने देखेंगे, स्टेबिलिटी है। और जो FIIs का इतनी सेलिंग हमने एब्जॉर्ब करी है, वो भी कुछ हद तक उसका श्रेय जो है वो SIPs को जाता है। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आने वाला है, और थोड़ा बेहतर ही होगा आने वाले समय में।
2: And a quick comment on the increase in debt funds.
0: So Gauram, what happens is that whenever money, so debt funds is purely parking of money by corporates.
2: Reflection of the volatility.
0: And if people are avoiding large caps in the time being, then they will park money for short term in debt funds. But debt fund flows are very, very volatile. So this month you may have seen 1 lakh crore inflow. Next month you might see 1 lakh crore outflow. Okay. This is a typically short term money. This is not really long term invested in the Indian debt markets.
2: So wait and watch is a lot. What a lot of retail investors and investors Absolutely. Are doing.
0: And retail investors are tilting towards higher risk, which is basically mid caps and small caps.
2: Right. Moving on to our next story, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 967 lakh hectare area as of the 7th of this month. Meanwhile, the government has said that it is continuously monitoring the evolving monsoon situation and the possible impact of El Nino. conditions on agriculture in close coordination with the India Met Department.

0: Indian banking by improving credit delivery, customer service, financial inclusion, operational efficiency and fraud detection.
1: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। पुनीत, अभी कुछ समय पहले हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का मार्केट बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, लेकिन अभी जो मौजूदा आर्थिक अस्थिरता की हम बात करें, स्थिरता तो नहीं कहना चाहिए, उसका असर लग रहा है कि आपको एशियन मार्केट्स में ज़्यादा पड़ रहा है?
2: देखिए, एशियन मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत हमने तेज़ियाँ देखी, फिर बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट्स में देखी। मुझे लगता है अब कुछ कंसोलिडेशन, अब कुछ जो एक इनिशियल एक अफरा तफरी थी वो कुछ कम होगी और बाजार अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर शायद चलेंगे, वो अच्छा भी है मतदानों के लिए।
1: और चिप सेक्टर से क्या उम्मीद देखी जा सकती है?
2: देखिए, चिप सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, तो हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ हद तक वो पैसा रोटेट होकर इंडियन मार्केट की तरफ आया है।
0: So now our world markets moving more on domestic issues or domestic this thing or geopolitical still?
2: So there is no longer this global trend in the markets now. We see the US markets move in a different direction. So right now they're kind of disconnected with each other. It happens in certain times.
0: Right.
2: But right now they're not moving in like following each other.
0: Moving to crude oil prices now. Global crude oil prices paired early gains today. Brent crude was trading nearly unchanged at $87.75 per barrel. In intraday trade, West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.21 per barrel when reports last came in. So countries realigning their oil policies and all, even for the long term in the future, even if the Middle East thing gets sorted out. But they're saying, you know, we really can't be so dependent again. You think that's going to happen?
2: Absolutely. I think the oil trade is being rewritten all over. And I think next 10 years, we'll see the oil markets being very different from what they are today. So it's a good thing. It's probably a geopolitical commodity right now. But going forward, I think this will be de-risked to a large extent. And the dominance of the Middle East in the oil trade, I think that will decline over the next 10 years.
1: Puneet, agar oil sector ki hum baat karte hain, to kacche tel ki keematon ko lekar ke lagatar एक चिंता का माहौल देखा गया है पिछले कुछ समय में। भारत के नजरिए से अगर देखें, खासतौर पे ऐसी स्थिति में हम तेल को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसी स्थितियां बन सकती हैं हमारे लिए?
2: देखिए निखिल, अभी जो हमें कंपनी जगत के नतीजे आए हमारे सामने, ये बात साफ है कि कॉस्ट प्रेशर्स इस तिमाही में बहुत ज़्यादा थे और कंपनीज के मार्जिन्स पे भी असर पड़ा उसका। तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और एनर्जी प्राइसेस को, क्योंकि लार्जली बिकॉज हम 80-90% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो उसका असर भारतीय कंपनियों पर, हमारी इकोनॉमी पे बहुत गहरा पड़ता है। अभी तक सरकार ने उसको अच्छा मैनेज किया है, पर मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म डीरिस्किंग पॉलिसी ज़रूर भारत को चाहिए होगी। हम इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर या अनसर्टिनिटी के ऊपर। तो मुझे मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पॉलिसीज भी आएंगी, भारत अपने भी एनर्जी व्यापार को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए।
1: इस पे यूएस मार्केट का कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है?
2: देखिए, एनर्जी प्राइसेस जो है उससे यूएस मार्केट्स पर तो देखिए फर्क पड़ ही रहा है, बिकॉज वहां पर जो पॉलिसी है उसको सीधा सीधा वो असर डालती है। वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंपैक्ट पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने काफी हद तक इसको दरकिनार करके और ज्यादातर एआई ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर ध्यान दिया है और वहां पर उसका असर ज्यादा है
1: जी। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। सोना 1.4% की बढ़त के साथ 152,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.7% की तेजी के साथ 235,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कॉमेंट्स होंगे? पिछले कुछ दिनों में एक ऊपर चढ़ने का सिलसिला हम देख रहे हैं।
2: देखिए, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स, उसका सीधा असर अगर आप देखें तो ऑयल, डॉलर और सोना चांदी, जो इसका जो वो बना हुआ है
1: कॉम्बिनेशन
2: बना हुआ है। और जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हुई, तो वहां पर गोल्ड के दाम पड़े
1: जी। पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद निखिल।
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू पुनीत, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड नाउ लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices fall by nearly 0.5%. Sensex drops around 400 points. Nifty settles below 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook. Says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices. Changes to take effect on 30th of September this year. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेष

जो द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से ये 11:41 और 4 सेकंड हो चुके हैं। तो गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज के साथ। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है आक्रमण।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 27 सेकंड हो चुके हैं। गीत मेरे मनमीत में अब जो आप गीत सुनेंगे वो मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत पद है, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। और इसी गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 12:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम निशिगंधा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा। तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, धड़कनों को जीने का जैसे सुरूर आ गया।

पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे, पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं हम।

रेडियो कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता, सुधार और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से कल नई दिल्ली में केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री जोसेफ से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और पानी की सतह पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 135वें डूरन कप के अपने आखिरी मैच में FC1 को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ई के मैच में नोंकसेह SSCC ने मुंबई फुटबॉल क्लब पर 7-0 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अल्फाज के साथ। लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, हमने तो तुम्हें अपनी हर सांस में बहुत गहराई से बसाया है।

तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। बस इतना समझ लो कि तुमसे प्यार बहुत है और कोई बात नहीं।

न जाने मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों है, तुम्हारी हर बात पर इतना एतबार क्यों है। तुम पास नहीं हो फिर भी पास लगते हो, इस दिल को बस तुम्हारा इंतजार ही क्यों है।

न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, बस रूह से रूह तक की डोर बंद गई हमारी। न जाने क्यों तुम अपने लगते हो मुझे, न जाने क्यों तुम इतने अपने लगते हो मुझे कि तुम पर वार दी ये जिंदगी सारी।

सारी सारी रात जागते हैं बस हम इसी आस में, सारी सारी रात जागते हैं हम बस इसी आस में, शायद कोई ख्वाब बनकर तुम आओ मेरे पास में।

तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, अब उम्र भर का साथ ही है हमारी चाहत का हासिल।

मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, भीरा पड़े इस दिल को मोहब्बत से भर दिया। भटक रहे थे हम अंधेरों के मुसाफिर बनकर, तुमने आकर मेरी जिंदगी को एक नया सवेरा कर दिया।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में उसके सैनिकों ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। ये जहाज ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी मध्य कमान ने कहा कि जहाज ने रुकने के लिए दी गई कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने एमवी वेला नोवा के इंजन रूम में मिसाइलें दागी और जहाज को नष्ट कर दिया। इस समय अमेरिकी नौसेना के अरब सागर क्षेत्र में 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रैंडन नकाशिमा ने इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने कनाडा ओपन 2026 के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. The Parliament passed the Tribunal's Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूं अंजू एक बार फिर से आप सभी के साथ और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? मेरी तो हर एक दुआ में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र शामिल होता है।

छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुम्हें, झूठ मत बोलो क्योंकि रूह तक पहुंच गई है ये महक।

मेरी बातों पर तुम्हारा इस कदर मुस्कुराना साफ कहता है कि मुश्किल है अब दिल को बचाना।

मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मानो या ना मानो कुछ तो तुम्हें भी होता होगा जिक्र आने पर।

इनका मिलना इन पर छोड़िए, लेकिन हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और थोड़ी देर बाद यानी 3:10 पर अर्जित रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। अभी सुनिए आप समाचार और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले कल लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित

कहा, रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। मीर यार बलूच ने दावा किया कि 50,000 से अधिक बलूच अभी भी पाकिस्तान की यातना कोठरियों में अमानवीय अत्याचार झेल रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, OIC और यूरोप के सदस्य देशों से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चौरा मैदान में लगभग 50 तिब्बती पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। वे तिब्बत के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और तिब्बती भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ शिमला द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन कल शाम 4 बजे शुरू हुआ और आज शाम 4 बजे खत्म होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह भूख हड़ताल लोबसांग रंग जेन की याद में की जा रही है। आयोजकों के अनुसार उन्होंने चीन की सरकार की नीतियों के विरोध में 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल ईगा स्वियातेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं सीड एलिना स्वितोलिना से होगा। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्वियातेक 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्वितोलिना ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी न भूल पाओगे। 3:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी की आवाज में जिसका मुझे था इंतजार। आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर आदतें कभी नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तो फिर ये जिंदगी नहीं बसती। 3:29 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

भटक न जाओ कहीं, अब इस डर से बाहर ही नहीं निकलते हो। लोग क्या सोचेंगे, अब ये भी तुम ही सोचते हो। जितना जंजीरों में बांधोगे खुद को, उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। इतनी सी बात भी क्या तुम नहीं समझते हो? बेशक समझदार होना अच्छी बात है, बेशक समझदार होना अच्छी बात है, पर हर दम समझदारी का बोझ अपने ही सर क्यों रखते हो? निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा। निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा। हर समय बिना बात के इतना क्यों डरते हो? 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: प्यार करने से पहले जरूरी है ये मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले।
1: जा जा।
0: प्यार

नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नज़दीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी कभी दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी कभी भी दिखें लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए भी रखें। 3:51 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है और साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। कोलंबिया में आए भूकंप में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। पश्चिमी कोलंबिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बचाव दल मलबे के ढेर के बीच काम कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे कि वो उन लोगों की आवाज सुन सकें जो इमारतों के नीचे दबे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कोशिश यही कीजिए कि कोई बिना बात के आपसे नाराज़ ना हो। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज़ ना हो। रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए। हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज़ तो उसे भी इस बात का एहसास ज़रूर हो। 4:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एक बार फिर से अलचेत। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: उदित नारायण जी की आवाज में अभी अभी आपने सुना तेरा मेरा मेरा तेरा सपना है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:20 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहां है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो? परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों लगते हो? 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

छोड़िए अब बेचैनियाँ सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियाँ सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़िए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से रहिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी। मेरी इन बातों का थोड़ा ख्याल भी रखिए। पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। 4:35 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कोशिशें तो इस कदर की मैंने कि कोशिश ने खुद मुझसे आकर कहा कि मुझसे अब और कोशिश ना हो पाएगी। सभी ने मुझसे कहा रहने दो अब और कोशिशें, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ ही जाएगी। मैंने भी हार ना मानी, ना हुआ ज्यादा बेकरार, करता रहा कोशिशें यूं ही बार बार। और फिर दिखने लगा असर, होने लगा विश्वास, तब पता चला हर कोशिश में छिपा था मेरी सफलता का राज। 4:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीपीवी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर की कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है, साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. President Draupadi Murmu has given assent to prevention of insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month amending the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. The bill has become a law following the president's assent. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violation being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
3: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression. And more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights. And I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: On and in High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rehman, Mr. Jaiswal said New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. Sharing a video on social media platform yesterday, Mr. Modi urged everyone to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. In Canadian Open Tennis, 19th seed Luciano Dardari of Italy will face 28th seed Brandon Nakashima of the United States in the men's singles quarterfinal in Montreal last night. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है, फिर भी वो एक बार आसमान को छूना चाहती है। इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, बस समस्या यहाँ पर है कि इंसान अपनी ज़मीन को भूलकर हमेशा ही हवा में रहना चाहता है। 5:11 हो चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है भोर सुहानी, और एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही ज़रूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही ज़रूरी है। सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए। सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती ना करिए। 5:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।